0: कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट वीटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी
2: नेपाली कलाहरू रंग सँगै बाँच्छन्
3: एभरेस्ट कलरले खुशी

बायोनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। धाङको तुलसीपुर मरलक राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार कलाक ऐना विरम एसएस या पाई थ्यूर शास्ति व्यवहार प्रतिरहलबा। भाइरल जन्य रोगको विरमयको संख्या अत्यधिक भरलक कारण अस्पतालको सैया पूर्ण रूपमा भर्गिलक। अस्पतालमा मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर मोहब्बत नुरल ओहदासे जानकारी दिएर उहाँको अनुसार सैया अभावको कारण गम्भीर अवस्थामा विरमय हुनकलाई अस्पतालमा धैकन उपचार गर समस्या हो रहल। प्रादेशिक अस्पतालमा हालसम्म 50 सैयाको केल स्वीकृति प्राप्त बा। यद्यपि अस्पताल प्रशासनसे आमा सुरक्षा कार्यक्रम, संघीय सशर्त कार्यक्रम ओ साबिक कोविड कार्यक्रमको जनशक्ति परिचालन कैकन आपन जो स्रोत साधनसे हाल 141 सैया सञ्चालन गर्तिरहलबा। विरमयका चापभरि अत्यधिक बाद सामान्य दिनमा फे दैनिक 500 से धुर ओ सरकारी विदा पाछक दिनमा ओपीडी ऐना विरमयको संख्या 700 सम्म पुग्न कलक डाक्टर होदा जानकारी दिएरखल। विशेष कैकन बाल वार्ड, मेडिसिन वार्ड ओ प्रसूति वार्डमा सैयाको अभाव बा। बाल वार्डमा 11 ठो सैया रलकमा चाप भरल पाछ 13 ठो पुगागिल बा। सैया उपलब्ध कर्देकला कति दैनिक दर्शनो फोन ऐना ओ विरमयको चाप धान निसेकजना अवस्था रलक डाक्टर होदा बटवारखल। अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर से सहज एवं सुलभ सेवा पाई लागल पाछ। अस्पताल प्रति नागरिक विश्वास बढ़लबा। उह कारण विरमयका चाप अत्यधिक वृद्धि हुइतिरलक उहाँ बटवारखल। बेडको अभावमा उपचारमा समस्या हुन करलबा। अस्पताल विकास समिति से यहन सरकारी स्तर से जो ओएनएम सर्वे कराकन स्थायी दरबन्दी सृजना कैकन कम्तीमा 200 सयामा स्तरोन्नति कर पर्ना माग धरती आराखल। राजपुर गाउँपालिका दुई दपुरका किसान अनिता चौधरी अखि गडौला पल्ती मल उत्पादन कर्ती आरखले। उहाँको अनुसार 3 वर्ष अगाडि उत्पादन शुरू गर्लक उत्पादित मल आफन खेतोमा जो प्रयोग गर्ला उसतहका बिक्री समेत कर्ती आरखले। ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र से गडौला मल उत्पादन सम्बन्धी तालिम पाइल पास उहाँसे एकर उत्पादन शुरू गर्लक हुइटे। उहाँसे गडौला मलसँग कम्पोस्ट मल ओ झोल मल समेत बनिटे आरखले। अपनासे प्रयोग गरल पाछ बाँकी रहलक गडौला मल प्रति किलो 25-30 रूपियाँसम्म बिक्री गर्ना करलक बटवारखले। उसतक राजपुर गाउँपालिका एक कदबेरुवाका अगुवा किसान राम आचार्य चौधरी फे 3 वर्ष से गडौला मल उत्पादन ओ प्रयोग गर्ती आरखल। उहाँका अनुसार गडौला मल तयार गर कम्तीमा 3 महिना लग्न कर्था। किसानको यही अभ्यासन स्वा विस्तार गर ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र से हेफर इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा ओ गढवा ओ राजपुर गाउँपालिकामा भिटा परियोजना सञ्चालन गर्ती रहलबा। गढवा ओ राजपुरका 10-10 जना किसान हन। गणौरा मल, कम्पोस्ट मल, जीवामृत, पञ्चकव्ये, झोल मल ओ हरियो मल प्रयोग सम्बन्धी तालिम तथा प्राविधिक सहयोग दिगिलक ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रक आसमानी चौधरी बटवारखले। दंगीसरण गाउँपालिका 6 बगरमा अपरम्परागत उपचारकर्ता हुकनकलाक मानसिक स्वास्थ्य ओ मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल। बागर सामुदायिक सिकाई केन्द्र दंगीसरणको आयोजना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको समन्वय युनिसेफ नेपालको सहयोग तथा समन्वत नेपालको प्राविधिक सहजीकरणमा कार्यक्रम हुइलक हो। बागर सामुदायिक सिकाई केन्द्रको अध्यक्ष चुलिया चौधरीको अध्यक्षता तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष शम्भु गिरीको बरपौनामा हुलक कार्यक्रममा अध्यक्ष गिरीसे मानसिक स्वास्थ्य फे शारीरिक स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण अलग बटवा रखल। उहाँसे मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुलक व्यक्ति हन हेसे दृष्टिले निहकन समयमा जो समस्या समाधान परामर्श उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध कराई पर्नामा जोर दिएरखल। समुदायमा परम्परागत उपचारकर्ता हुनको पहुँच ओ प्रभाव महत्वपूर्ण हुलक हुन्छे। हुकनकला मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान ओ सिप प्रदान गर समस्या हुलक व्यक्ति हुन समयमा जो स्वास्थ्य संस्थामा पुगेकला सहयोग पुग्न उहाँ बटवारखल। कार्यक्रममा आधारभूत अस्पताल बागरका प्रमुख डाक्टर आकाश सापकोटासे मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान सम्बन्धी हुलक समस्या हुलक व्यक्ति हुकनक कर्ना व्यवहार प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग तथा आवश्यक अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पठिना प्रक्रियाबारे प्रस्तुतिकरण गरल।
हुइठा ताजुक थारूवाचक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन्ज्याफे थारूवाचक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसी समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन डीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: श्वेत पर्दरक पिसाब पोल्ने समस्या
3: पाठेघर में समस्या पाठेघर खस्ने को समस्या
1: पाठेघर में मासु पलाउने
3: निसंतान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठेघर में कैंसर भय नभएको चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मशीन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जांच हुने मिति यही भदौ 26 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-590-410 मोबाइल नम्बर 98478-28913 र 98095-12871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज ही को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।